0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बना, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: हुकम नुस्तर गिरा मंदे तोरी तूरी की गी
1: दिलबरा नतमात नवाए ददी मसाले खुदेर आसान हल दे
0: अंकल जी हगा सो
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी पावर एक्स एनर्जी टैनिक खुख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चे दयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही
2: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल द हगमा शुमानु द पारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल कीगी गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोलली भी निनुम याद साते पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरा दा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878
3: रेडियो अमन नेटवर्क
4: पैगाम अमन है
5: प्यार की एक दुनिया लेकर
3: मोहब्बत समेट कर
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
6: रेडियो अमन नेटवर्क अमन
7: सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो ले आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860
8: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ खाने के फवायद जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे मर्दाना कमजोरी को दूर करे हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे मैदे की गैस जलन तेजाबियत बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे बवासीर खूनी उबादी कब्ज और मतली में मुफीद है मालिश के फवायद सर दर्द कमर दर्द पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात बालों को लंबा घना और सिया चमकदार बनाए खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए बच्चों के चलने में दुष्करे फालिज के मरीजों और हर कसम के जख्म के लिए भी मुफीद है जिस्मानी थकावट जहनी सुकून हर कसम की एलर्जी के लिए भी मुफीद है तरीका इस्तेमाल सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860
7: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे कील मुहासे छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे आपके चेहरे गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा शफाफ बेदाग गोरा चेहरा बेहतरीन नतीजे के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481
8: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ खाने के फवायद जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे मर्दाना कमजोरी को दूर करे हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे मैदे की गैस जलन तेजाबियत, बदहजमी और मेदे का दर्द खत्म करे। बवासीर, होनियोबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरे और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 03।

0: 21 162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द होशाले में।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।

Alchad up. Welcome back. You are listening Dabang Radio FM. You are listening Amon Radio Buttergram. भाई आए करे तो भाई मैसेज किया करे आप कॉल करें ठीक है ना भाई किसने याद किया सलाम सा संगी नादिया गुल जगन्नाथ हर युगम बदल खोर में दत्त सलाम के नो टेंशन जिंदा

0: ये है कमर चाय का पाकिस्तान।
1: दा चल कप समा दे और कप अगर दे वो हल ये कमर दे। कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय, रंग भी मिसाला खंद ला जवाबा। कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमच द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमाली की।
2: नेमनी नेमनी दो सौ अजल वर्तमान हम द कमर चाय वही दीदी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बेखुंद चेहरा पा महकड़ी हुई
3: दाजल ब कमर चेहरा ओडम खुदा बराता चरता मिलाउशी
1: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतर प्लेन ताकोट करग और बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पहर गट और उड़ू की जनरल स्टोर की मिलावीगी पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदी द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई द कमर चाय पाड़ा नूर मालूम पदी नंबरों तरला सकवले शई 0320 900 920 बल नंबर दे 0314-92-490-83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली
0: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: तरीका कार ये है कि हमने हर इदारे में अपना डिस्प्ले सर्विसेज का किया हुआ है, उसके अंदर जो है नोटिफाइड पब्लिक सर्विसेज का जिक्र है, उसका प्रोसीजर का जिक्र है, उसके टाइमलाइन का जिक्र है, उसके डिजाइनेटेड ऑफिसर का जिक्र है और उसके साथ साथ उसकी अपेलेट अथॉरिटी का जिक्र है। कोई भी सिटीजन है वो अपनी एप्लीकेशन वहां पर मौजूद जिम्मेदार एहलकार जो उस ब्रोशर में मौजूद है, हमारी वेबसाइट पर भी है और उस ऑफिस में भी लगा हुआ है, तो वहां पर अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके, उसकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वहां डिजाइनेटेड ऑफिसर को फराम करे, अपनी एप्लीकेशन दे और वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर ये रिसीविंग भी ले सकते हैं। जिम्मेदार एहलकार जो होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एप्लीकेंट को रिसीविंग देगा। ये हमारे एक्ट की सेक्शन 5 में बाकायदा इसका जिक्र है कि वो रिसीविंग देगा कि किस टाइम पे, ताकि उसका टाइम काउंट होना शुरू हो जाए कि ये किस टाइम पर इसकी सर्विस जो है ना वो किस टाइम पे एप्लीकेंट जो है ना वो उस ऑफिस में गया है इस सर्विस के वसूल के लिए, तो वो बकायदा उससे रिसीविंग ले सकता है और रिसीविंग लेके फिर अपने डॉक्यूमेंट्स उसके वो डिजाइनेटेड ऑफिसर चेक करेगा, उसमें अगर वो अहल है तो उसको वो सर्विस फराम करेगा, अगर अहल नहीं है या उसके डॉक्यूमेंट्स में इशू है तो वो बकायदा उसकी दरखास्त पर लिख के उसके वापस करेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है इसको हमने फलां वजूहात की बना पर इसको रिजेक्ट किया है और अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा करें तब हम आपको ये सर्विस फराम करेंगे। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, कोई शख्स जाता है विलेज काउंसिल के सेक्रेटरी के पास और कहते हैं जी मुझे डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दें, मेरे दादा का, परदादा का, या मेरे किसी का वालिद साहब फोत हो गए,
1: वालिद साहब को, वालिदा फोत हो गए, भाई फोत हो गए,
0: तो वहां पर डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मकामी जो तस्दीक है या कब्र की तस्वीर है, तो वो सारी चीजें बराबर करके तब सेक्रेटरी को वो सबमिट करेगा। अगर कोई चीज कम है, मिसाल के तौर पर उसकी रिक्वायरमेंट में जरूरी है कि आपने कब्र, तो आप सेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि सिटीजन के अंदर खुद कमी है,
1: पता
0: उस,
1: होता है
0: हाँ, उसको उसके अंदर यह कमी है कि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो डिजाइनेटेड ऑफिसर फिर उस सर्विस को टाइम पर देने का पाबंद हो जाएगा और वो फिर वो टाइम पर फराम न करे तो सिटीजन जो है ना अपनी पहली अपील जाए अपील को कर सकता है। जाए अपील में जिस तरह फर्द के लिए डिप्टी कमिश्नर है, डिजाइनेटेड ऑफिसर पटवारी है और उसकी अपीलेट अथॉरिटी डीसी साहब है, एफआईआर के लिए एसएचओ उसका डिजाइनेटेड ऑफिसर है और डीपीओ साहब उसका अपीलेट अथॉरिटी है, फिर अपीलेट अथॉरिटी जो है उसके पास टाइम है कि वो 30 दिनों के अंदर उसके पास सिविल कोर्ट्स के वही इख्तियारात हैं जो कमीशन के पास हैं, कमीशन ने उनको वही इख्तियारात दिए हुए हैं, तो वो इस अपील को निपटाएगा और वो देखेगा कि किसकी गलती है, फिर उसके पास काफी इख्तियारात हैं हमारे जो कानून ने उसको दिए हैं, वो फिर जो है ना डिजाइनेटेड ऑफिसर के ऊपर अगर वो ये समझता है कि उसकी गलती है और वाकईतन इसने सिटीजन को तंग किया है या इसको बरवक्त सर्विस नहीं दी है या मयार और शफाफ अंदाज में नहीं दिए, तो वो उसके ऊपर जुर्माना भी कर सकता है, 500 से लेकर 25,000 रुपए तक उसके ऊपर जुर्माना भी कर सकता है।
1: जी आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने बंदे हैं और आप इसका लोकेशन अक्सर लोगों को पता भी नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं?
0: अच्छा, एक तो दो बातें हैं आपने की, एक आपका क्वेश्चन है और एक आपके ही क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन भी है और उसका फिर मैं जवाब भी देता हूँ। एक तो ये लोकेशन, हमारे 35 इज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा में और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद है और उसके साथ उसका स्टाफ है, असिस्टेंट डीएमओ है, नायब कासिद है, सारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं और इनका अमूमन जो ऑफिस होता है वो होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कंपाउंड में, बस डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के कंपाउंड ज्यादातर मोस्टली, कुछ का साथ में टीएमए हाल में ये इधर उधर, लेकिन ये है कि मोस्टली जो है ना हमारी जो
1: हमारा जो कोई और जगह वो
0: हमारा निशेमन जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस होता है, वहां पर ये हमारे पास ऑफिस होता है और हमारा स्टाफ वहां पे मौजूद होता है। उसके साथ साथ जो दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा था वो ये है कि हमारे पास लोगों को हमारे पास आने के लिए ज्यादा तकदो की जरूरत नहीं होती है, हम फेसबुक पर भी मौजूद है, हर जिला आपको फेसबुक पे मिलेगा, डीएमओ आरटीएस पर टेलीग्राम लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरे पास अभी एडिशनल चार्ज है कोलाई पालस कोहिस्तान का,
1: वो जी ग्रानो मीना वालो द्रे जिले संगच जमुंगा द रेडियो अमन आवाज जी द्रे जिलो था नो सेब सरच दे नो आगसरा کوستان چې دنه هم دریزی لیدی یقینا ډیره غټه ذمہاری او چې مونږه د پرسنالیټی ته وګورو او دومره ذمہاری ته بیا دغه باوجود راځي او تاسو سره خپل غږ او شریکه

आपका आवाज बिल्कुल क्लियर है जी, आप कौन कहा से? बस फुल नुमली के नुमंग तबल खान ना के सलाम खातिर बैसेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देर मनना देर जाते शुक्रिया और मनन संग देर मुहतरमा गुडई पठानी गर्ल्स समग प्रोग्राम तरगली सलाम खले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, देर मनन गुडी खुशाल हो सी, देर मेहरबानी सी अंसार दो पंचपीर नरगली समग प्रोग्राम त सलाम की। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम भाई बैहान संगे बैहान क्यूट जरका यमाद पीर सदोना जर के पखेर पखेर सिंह गुड़े खाई से दे बराबर दे बिचा। सलाम खातिर भाई सिंह ता अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है मन खेरा ता वो ची भाई नन में प्रोग्राम टूल प्रोग्राम वावरी दूं देर पशोक सर भाई ता सु समय दकार खबरी को विफा माशाल्लाह आवाज बिल्कुल सपाने फातमा यमद बट ग्राम ना सलाम कबूल के। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, देर मन ने गुड़ी खुशाल हो सी कामयाब हो सी। सलाम मुजान वेलकम द थवाई मसिंग ता सु खो गवास देवर मका मामू आई एम वलीजा फ्रॉम शांगला। वलीजा पखेर वलीजा समाद दनन्ना कम से कम सलूर पिंजे काला मखी मापे रेडियो माने प्रोग्राम का बोलो अल्ट बेस में प्रोग्राम बोले दलो नो विच डी टाइम बाद में सा आवाज और रेडियो खुशाल है सुना। हाउ आर यू भाई? आई एम फाइन भाई, इट इज सो मी शिनखाले फ्रॉम करक। शिनखाले जमंग प्रोग्राम तरा गली दा शिनखाले ते चिरता उर कवे नरी पानूस नाली पानूस ते कसी रेजी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रहा है। खाली पखेर सड़े में शिगुड़े भाई बस वावे ना रिपोर्ट माने आवाज उस होके दे जिडेर मेहरबानी शुक्रिया खुशाल हो। सलाम सलामुना गुलरंग स्वाते माद स्वावे ना और भाई लगा खजी इंशाल्लाह दखेर जरूर दखेर खा रावलू बदखेर खा खातिर भाई सलामुना दरवाल। वालेकुम अस्सलाम टोल प्रोडक्ट रागले राइस ब्यूटी क्रीम हम रागले अब्दुल कईम आफ्रिदाई मतनो बाजार दुबई प्लाजा दुकान नंबर 5 टूल प्रोडक्ट सर अवेलेबल दखेरा अब्दुल कईम देर मेहरबानी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मामू प्रोग्राम डिडिर खैश देखा सनाद बटग्राम सना पखेर पखेर मामू अकीब जान सशो मामू प्लीज मत पता नहीं बच्चा अकीब जान सन पे जन्म किसी बटग्राम की वार जो या ब्रॉडकास्ट और खबर ब्रॉडकास्ट वो पकपल जेमानी प्रोग्राम बेस्ता सुधर पा रखा। अस्सलाम वालेकुम जमा रोजाना जान पा जिंदाबाद सलाम कबूल के सवाब ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर भाई सलाम वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह अख खुला जान दा पीछे तरह सलाम की। वालेकुम अस्सलाम सलाम बुने बुने कमजे दिल्ली के लिए बच्चे प्रोग्राम जबरदस्त है। सलाम कबूल के। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेहरबान सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आल सिस्टर तुम सलाम अनारकली द बटग्राम माशाल्लाह खबर मोकड़ी डेर वेरवानी अनारकली खुशहाल उसी सलाम खातिर भाई सिंह तासु जद बटग्राम ने मां होता सुनुम ने दिल्ली के लिए बच्चा खातिर भाई सिंह मुकरम मिलमानो हमने अभियान हम सस प्रोग्राम और शाम डेर मेहरबानी को शोक सर सस प्रोग्राम और हगाता सुचिक मोरज वजीफा खुद लेवा हगा दृष्टि दे पारा कवलेश बिल्कुल एक कवलेश वफा कुल वफा फ्रॉम चरसदा बिल्कुल एक कवलेश खैर खा देर खुशहाल शी गुड देर देर मेहरबानी देर जाते शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई सिंह। वालेकुम अस्सलाम भाई जमा नामा वर का जमा देर परेशानियां दी है खैरा दो चार सदी ना इंशाल्लाह जरूर दे खैर खास सुना मैं बोली कम जान सर खान। सलाम मामू ज गुलरुख और जुलेहा अली जान हम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम और सलाम कबूल के। वालेकुम अस्सलाम सलाम वही मां को भी जाने का ना जमानु म दरे जलबाख लखा तजला था मंडी डे सलाम वाई जी डेर मेहरबानी डे डे जाता शुक्रिया खुशहाल हो सी और दसूख दा मरवाद चार सदी ना खा डेर मेहरबानी शुक्रिया। निकल गया माँ है बस कड़े दे तर्जुमा में हम कड़े दा जुआई माँ फयाद सरा खेरा और सदी लिख रही बच्चा जमंगा पता सु यकीन ये पता सु मुविदबार दे पवल चामु बीखी यकीन निश्चा आलिया नूरी माँ जमा सलाम कबिल का। वालेकुम सलाम तस्मानी अजमीन खोरी और खोई ने हमेशा दबार पर उन्होंने ट्रस्ट कही ममू प्रोग्राम माशाल्लाह डेर खुले दे देर खुले खबरें मोकली रेडियो मो वो लगो प्रोग्राम बिल्कुल लाइव दे जमुगे सलाम कबूल की। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लिंता लिंता प्रोग्राम की सलाम की इंशाल्लाह दखेरा पसिक्स डेट वानी बा जमा बाबा खा वही पशपगम तारीख में बस सवाल दिन उम्री लजी और जमुग कर बखत मीर खेर इंशाल्लाह दुआ गाने बरते खा सलाम के छे चंगे तासु प्रोग्राम और प्रोग्राम नाइस के दुआ गुल और शिफा गुल जमानी अजबी दुनिया ने खेर लेकिन मरवत है प्रोग्राम तरह का सलाम निकली। वालेकुम सलाम सलाम भाई तासिंगे जो कलसुम द बाजान है कलसुम पखे यू कलसुम भी नाजक रहेगा ना अगर बस मंगे प्रोग्राम और कहने बाबरी सवाबाई की सलाम।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

कम पशपक बजी डुबशी भी और सबा सहर उमिन ड्रपासा पशपक बजी बा सिर वही हम दाऊ तरदी दमा मुहिम न्यूज अपडेट इता सुअर दो अहमद जार ना द नूर खबर नु और मालूमात रपार अमन रेडियो नेटवर्क सरो से उस पर अहमद जाल दी इजाजत दलवी अल्लाह पामान इश्पा मुपखेर।